वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

प्रार्थना अभवत। इस हफ्ते में हम गाने का आधार लेकर संस्कृत सीखेंगे, इसलिए पहले गाने का एक पद गाएंगे। गाना आपके परिचय का है, इसलिए गाना सुनते सुनते आप गाने भी लगेंगे। वैसे ही भाषा सुनते सुनते आप संस्कृत भाषा बोलने भी लगेंगे। विश्वास नहीं होता? आगच्छन्तु संस्कृतम शृण्मः, संस्कृतम वदामः। अद्य सहायिका रूपेण मया सह मम सख्यौ स्मिताजी, ज्योतिजी च स्तः। अद्य केवलम् एकं पदं गायामः।

0: भीमार्जुन समायुधि
1: भीमार्जुन समायुधि
0: युयुधानो विराटश्च
1: युयुधानो विराटश्च
0: द्रुपदश्च महारथः
1: द्रुपदश्च महा

0: भोजश्च
1: पुरुजित कुंती भोजश्च
0: शैव्यश्च नर पुंगवः
1: शैव्यश्च नर पुंगवः
0: युधामन्युश्च विक्रांतः
1: युधामन्युश्च विक्रांतः
0: उत्तमौजाश्च वीर्यवान
1: उत्तमौजाश्च वीर्यवान
0: सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च
1: सौ

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वणधोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: मदद का मैं हेतु. अचानक अगर कोई संकट में फंस जाए या फिर काम का ढेर हो और व्यक्ति अकेला पड़ जाए तो लगता काश कोई संगी साथी आ जाए और थोड़ी सी मदद कर दे तो भला कितना अच्छा हो जाए. सचमुच समय पर मदद मिल जाने से काम हल्का हो जाता है और मददगार के प्रति मन में आदर पैदा हो जाता है. दिल दुआएं लुटाने लगता है. विपदा में फंसे व्यक्ति को मदद करना मानव का सबसे बड़ा परम धर्म है और मनुष्य का अहम नैतिक कर्तव्य भी. मदद अर्थात वक्त पर जरूरतमंद की मांग पूरी करना, काम में हाथ बटाना, बड़े से बड़े कार्य में सहयोग की उंगली लगाना, आवश्यकता के अनुसार तन मन धन से सहायता देना भी मदद है. वास्तव में मदद वो पुण्य प्रदायी सद्गुण है जिससे मानव महान परोपकारी बनता है. लेकिन याद रखें, केवल काम निकालने के लिए की गई मदद करना तो स्वार्थ सिद्धि है, लेकिन बिना अपेक्षा और प्रतिफल की कामना से दी गई मदद मानव को महामानव बनाती है और ऐसा व्यक्ति समाज में सर्वसम्माननीय व्यक्ति बनकर के कीर्ति पाता है. अगर किसी के दिल में जगह बनानी है तो बिना मांगे मदद देने की आदत डालें. लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अगर मदद कर उसका बार बार बखान करेंगे तो हो सकता है दिल से उतर भी जाएंगे. कहा जाता है नेकी कर और दरिया में डाल, अर्थात मदद करे और भूल जाए जिससे मन दुख से बच जाता है, अर्थात मदद करे और भूल जाए जिससे दुख से हम बच सकते हैं. ईश्वर अनवरत मदद के हाथ आगे बढ़ाता है, हर घड़ी हर पल छोटी सी पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चला आता है लेकिन फिर भी भूल जाता है. वो प्रतिफल की कामना या उत्तर की इच्छा या अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए सभी ईश्वर को बड़े प्यार से याद करते हैं. अतः कहा जाता है भगवान देता है और भूल जाता है, लेकिन मानव लेता है और भूल जाता है. इसलिए ईश्वर के समान गुणों का डार बनना चाहिए. दुनिया में खुले हाथों से देते चले और भूलते जाए तो मानव से देव बनना सहज हो जाएगा. अतः मदद के हाथ आगे बढ़ाइए और दुआओं से दामन भरपूर कीजिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.
0: वेणुधोनी 90.4 FM KLE कणसू आणि भक्तिमय सकाळ मध्ये मनीषा तुमच्यासोबत. आज राशी भविष्य सांगते. सुरुवात मेष राशीपासून. आज उत्साह आणि आत्मविश्वास वाढेल. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करा. कुटुंबातील व्यक्तींचे सहकार्य मिळेल. वृषभ राश, आर्थिक व्यवहारात सावधपणा ठेवा. कामाच्या ठिकाणी शांतपणे निर्णय घेतल्यास फायदा होईल. मिथुन राश, संवादातून नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थ्याने अभ्यासात सातत्य ठेवावे. कर्क राश, कुटुंबासोबत आनंदाचा वेळ मिळेल. भावनिक निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थिती नीट समजून घ्या. सिंह राश, आज नेतृत्व गुण दाखवण्याची संधी मिळू शकते, मात्र इतरांचे मत ऐकणेही महत्वाचे ठरेल. कन्या राश, नियोजन आणि शिस्त यामुळे कामे व्यवस्थित पूर्ण होतील. आरोग्यासाठी योग्य विश्रांती घ्या. हे होतं सहा राशींचं भविष्य आणि आता एक छानसं भक्तिगीत. एकत्र वेणुधोनी 90.4 FM KLE कणसू भक्तिमय सकाळ.

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी सात धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक

0: मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
1: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
0: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
7: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान

0: सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
2: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
3: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, UCI पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत US की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का चिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 एफएम के एल ई कनसु। केली कैंसर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव।
7: कैंसर कोणत्याही प्रकारचा असो अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली भेटते।
6: प्रथमच उत्तर कर्नाटकामध्ये बेळगाव येथे तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सहित सुसज्ज हॉस्पिटल केली कैंसर हॉस्पिटल।
7: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि एमआरसीच्या पाठीमागे नेहरू नगर बेळगाव येथे।
6: तुमच्या आरोग्यासाठी नवीन आशेचा किरण केली कैंसर हॉस्पिटल।
7: मिळणाऱ्या सुविधा हायली स्किल्ड डॉक्टर्स टीम, केमोथेरपी, हेमटो ऑन्कोलॉजी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट,
6: रोबोटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सर वरती उपचार।
7: आमचा पत्ता केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि एमआरसीच्या पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव येथे।
6: फोन नंबर 08312552500 आणि 2473777।
7: मोबाईल नंबर 6360712326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099।
6: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल बेळगाव येथे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणु ध्वनि 90.4 FM। एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा। दोस्तों, जैसे ही हम स्पेशल प्रोग्राम का नाम सुनते हैं, हम उत्सुक हो जाते हैं कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज कौन से मेहमान हैं। तो आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। ये एक सीनियर राजयोग टीचर है। ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर सिरसी की इंचार्ज है। इन्होंने MA सोशियोलॉजी और MSc काउंसलिंग किया हुआ है। यह ब्रह्मा कुमारी से 1977 से जुड़ी हुई है। इन्होंने अलग अलग TV चैनल्स पर बात की है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर इनके श्रीमद् भगवद गीता पर 360 से भी ज़्यादा एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए हैं और आज वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करने वाली है। नमस्ते और वेलकम।
1: नमस्ते।
0: सबसे पहले वीणा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस क्या है, क्या ये कोई बीमारी है या कोई अवस्था है और ये किस उम्र में हो सकता है?
1: वैसे तो आजकल चारों ओर हम स्ट्रेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेस देखते देखते जैसे आपने पूछा, कईयों के मन में ये आ जाता है कि जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे स्ट्रेस भी एक बीमारी है। लेकिन वास्तविकता में स्ट्रेस एक मेंटल स्टेज है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस को समय पर मैनेज नहीं किया गया तो इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं।
0: ओके।
1: और स्ट्रेस क्या है, इसके लिए बहुत सुंदर एक डेफिनेशन हम लोग सुनाते हैं किसी बहुत अच्छे ऑथर का है। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ पेन विच कम्स टू टेल यू देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। कुछ बदलाव होना जरूरी है। जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव जरूरी है, इसे सूचित करने के लिए एक छोटा सा एक दर्द के रूप में वो महसूस होता है। जैसे कि पता ही नहीं, हेडेक शुरू हो गया, कोई रीजन नहीं था फिर भी हेडेक है, या बेहजमी अनडाइजेशन शुरू हो गया, क्यों हुआ तो सोचते बाद में चलता है कि कल मैंने थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट मेरा लाइफस्टाइल था कुछ था। इसलिए ये स्ट्रेस कोई भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों से बूढ़ों तक। आजकल हम ज्यादा यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं तो बुढ़ापे में भी देख रहे हैं, सब एज ग्रुप में। स्ट्रेस का कोई एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस है फिजिकली रिलेटेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यह मेंटली रिलेटेड है। और इसको एक साइकोसोमैटिक डिसीज के अंदर इसे लिया जाता है, क्योंकि होता मन में है लेकिन दिखता शरीर में। इसके कारण इसको साइकोसोमैटिक्स के इसमें लेते हैं। और स्ट्रेस अपने ही विचारों के श्रृंखला में होने वाले एक टकराव है। जैसे कि स्ट्रेस जुड़ा हुआ है मन से। मन में कई सारे विचार चलते हैं, जैसे कि सकारात्मक या पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। ये चारों तरह के विचार जो चलते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं। एक डाटा ये बताता है कि मनुष्य एवरेज एक दिन में करीब 30,000 विचार करता है। उसमें से 2/3 ऑफ द थॉट्स आर वेस्ट।
0: अच्छा।
1: माना ज्यादा से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स होते हैं। और वेस्ट थॉट्स और अननेसेसरी थॉट्स जो आते हैं, जिसको नेगेटिव थॉट्स भी कहते हैं, ये दोनों ज्यादा होने के कारण पॉजिटिव थिंकिंग कम हो जाता है। इसके कारण नेसेसरी थॉट्स को हम भूल जाते हैं। जैसे कि सब्जी बनाई, नमक डाला कि नहीं डाला, है ना, छोटे छोटे। बच्चा बैग पैक कर रहा है, जो नोट्स डालना चाहिए था उसके बदले दूसरा डाल दिया। ऐसे बिकॉज ऑफ वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, ये ट्रैफिक में ना नेसेसरी थॉट्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं।
0: जी हाँ। मैं अगला ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस के मानसिक और शारीरिक परिणाम क्या है?
1: जी, वैसे तो ये उद्भव होता है मन में, विचार तो मन में उद्भव होते हैं, लेकिन ये सोशली जुड़ी हुई थॉट्स है, जैसे कि कोई समाज के बदलाव के कारण फिनेंशियली कुछ आगे पीछे हो गया, हलचल हो गया, या शरीर में कोई बीमारी आ गई। हम लोग आजकल एक बात सुनते हैं, मुझे BP है इसलिए गुस्सा आता है। ये आपने सुना होगा, मुझे BP है इसलिए गुस्सा आता है, लेकिन ये रॉन्ग थिंकिंग है। गुस्सा करते हैं इसीलिए BP हाई हुई है ना। ऐसी जो हमारी गलत फहमियां हैं, ऐसे कारण मन, ये मानसिक भी है और शारीरिक भी है। होता मन में है लेकिन उसका इम्पैक्ट इफेक्ट सारा शरीर में दिखाई देता है। जैसे कि छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल एसिडिटी हो रहा है। हम सोचते कुछ खाने के कारण, नहीं, खाना केवल खाना कारण नहीं है। अभी एग्जाम शुरू होगा तो बच्चे एसिडिक हो जाएंगे, माँ बाप एसिडिक हो जाएंगे, फीवर आ जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएगा। कोई बाहर का कारण नहीं होगा, लेकिन मन के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको तनाव, मानसिक जो उद्वेग है, व्याकुलता है, अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन है ये मन में उत्पन्न होता है, लेकिन बाहरी कारणों से भी उत्पन्न होता है और उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर पर दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं 80% ऑफ द डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन, WHO के अनाउंसमेंट के प्रकार है ना, 80% ऑफ डिसीज अप टू कैंसर, उसका भी रीजन कई बार मेंटल स्ट्रेस होता है
0: जी। अब समझो हमें कोई भी तकलीफ है, शारीरिक मानसिक, कभी भी इंसान को तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम खुद उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं अपनी समझ के अनुसार, और फिर हम कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते हैं
1: जी।
0: तो अगर किसी को बेसिक लेवल पर खुद का स्ट्रेस मैनेज करना है, खुद से खुद की मदद करनी है या कोई घरेलू इलाज करना है, तो क्या करना चाहिए?
1: पहले तो जिसको अगर पता चल गया स्ट्रेस

0: क्या कह सकते हैं हम, जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तो थोड़ा पानी पी ले, कुछ कर ले और अपने आप को शांत करें, एक्सेप्ट सत्य को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रेस होना कम हो जाता है हमारा और उसके हम आदती हो जाते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में हम ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, छोटी छोटी बातों में, फिर आगे चलकर भी अगर वो स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो हम स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा अनुभव ये कहता है, जब मनुष्य स्ट्रेस में होता है या तो वो चिल्लाता है या तो चुप हो जाता है, ये दोनों बहुत गलत है। चिल्लाने से और इरिटेशन बढ़ेगा, चुप रहने से सप्रेशन होगा, मन को दमन करते हैं
1: जी।
0: इसलिए जितना हो सके जब स्ट्रेस है तो हम नॉर्मल रहने का अभ्यास करें, स्ट्रेस के प्रभाव में ना आए, तब हम स्ट्रेस को मैनेज करना अपने आप में कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं। अगर ये हम खुद से नहीं कर पा रहे, खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं
0: जी,
1: तो हम कहाँ से मदद ले, किससे मदद ले?
0: अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, जरूरी भी है। हमारे पास कुछ हम क्वेश्चन एरियाज रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ये टिक आउट करो, इससे आपका स्ट्रेस लेवल पता चलेगा। अगर स्ट्रेस लेवल ओनली 10% है तो इट इज मैनेजेबल, खुद में कर सकते हो। उससे ज्यादा है तो आपको किसी का मदद लेना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: या तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपके दिल को हल्का करे, या तो फिर स्ट्रेस मैनेज करने के कुछ फिजिकल, कुछ इंटरनल मेथड्स है उसको अपनाओ। फर्स्टली स्ट्रेस मैनेज करने का पहला तरीका है बी पॉजिटिव। अरे मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन है। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपके ऊपर बर्डन है, वर्कलोड ज्यादा है, वो तो है ही, आप बार बार अगर कहते रहोगे मेरे वर्कलोड ज्यादा है, मेरा वर्कलोड ज्यादा है, तो वो आपको 10 times ज्यादा लगेगा। रिपीट, डोंट रिपीट यूर प्रॉब्लम्स, करने से भी टेंशन ज्यादा होता है
1: जी।
0: उससे ज्यादा है अगर हमको टेंशन कम करना है तो हमारे मन को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है उस काम से। और वॉकिंग इज अ बेस्ट रेमेडी टेंशन मैनेज करने का। वो भी वॉकिंग करते समय सिंगल वॉकिंग करें, किसी से बातें करते नहीं
1: जी।
0: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉकिंग का एक डेफिनेशन है ट्यूनिंग विद द नेचर। जितना हम नेचर से ट्यूनिंग करेंगे उतना टेंशन कम होगा। और जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें हेल्प करने वाली है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को अगर अच्छी तरह से हम डिफाइन करें, इट इज सेल्फ सुपरविजन है, खुद को देखना है और खुद के लिए थोड़ा टाइम देना है। और हम मेडिटेशन के लिए एक बहुत सुंदर डेफिनेशन सुनाते हैं, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन।
1: यस,
0: है ना। अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन दो। हम टेंस आउट तब होते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, हम इरिटेट होते हैं, है ना। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है हमारा, इसलिए भी हम स्ट्रेस होते हैं। तो उसको थोड़ा कम करें। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना जब हम सीखते हैं ना तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। अब फैमिली में 3-4 लोग हैं, समझिए किसी के पति गीला टॉवल सोफे पे छोड़ता है, बार बार वो छोड़ता है तो पत्नी इरिटेट होती है, उसके कारण घर में थोड़ा सा तनाव बढ़ता है, वो बड़ा बन जाता है फिर। लेकिन एक्सेप्टेड, जब वो बदल नहीं रहा है तो माता क्यों गर्म कर रहे हो
1: जी,
0: है ना। थोड़ा सा हमें ही अपने आप को बदलने का नेचर बना लेंगे तो स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं। और रोज का आदत बना लेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करने का, 5 मिनट सवेरे शाम, थोड़ा टाइम देंगे तो स्ट्रेस मैनेज करना इजी हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस मन से रिलेटेड है, मन खुद से रिलेटेड है, जिसको आत्मा कहते हैं, है ना। अगर हम अंदर से शांत हो जाएंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा।
1: कहते हैं कोई भी तकलीफ हो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर,
0: डेफिनेटली।
1: तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें कि वो हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए कि हमारे जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कम आए या आए ही ना?
0: बिल्कुल। और पहले घर के वातावरण को हमें पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। घर ऐसा जगह है मनुष्य का, बाहर कितना भी टेंशन हो घर में आके मनुष्य सुकून पाता है। अगर आजकल हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, ये प्लास्टिक बेस्ड जो भी चीजें है ना, ये सब नेगेटिव है। हमारे घरों में वो ज्यादा होता ही है आज के अनुसार। इसलिए घर में पॉजिटिव एनर्जी

0: का संचार हो। इसके लिए थोड़ा सा ओम का उच्चार करना खुद से, ताकि घर में एक माहौल अच्छा हो और मुझे भी अच्छा फील हो। प्रोनाउंसिंग ओमकार इज अ बेस्ट मेथड टू डेवलप द पॉजिटिव एनर्जी, इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी समस्याओं का प्रिवेंशन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अटेंशन देना, सभी सोए हुए हो, मैं उठ के ओंकार करूं, उनको डिस्टर्ब करूं, फिर ओंकार से नेगेटिव, ऐसे नहीं होनी चाहिए, सोच के करना चाहिए। फिर घर में या बाहर में हम अपना नेचर थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं। कुछ भी हो जाए हम उसे पॉजिटिव ले ले। देखिए, कुत्ता भौंकता है तो हम वापस भौंकते तो नहीं है,
1: नहीं
0: है ना। इसी तरह कोई गुस्सा कर रहा, कोई इरिटेट करा रहा है मुझे, लेकिन मैं क्यों हो जाऊं। इसलिए खुद को संभालना जब हम सीखते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं
1: जी।
0: क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है ना, आग लग जाता है तो बुझाना मुश्किल हो जाता है, लगने ही ना दे। ऐसे हम नेचर बना लेंगे तो इजी हो जाएगा।
1: स्ट्रेस मैनेज करना क्यों जरूरी है?
0: बहुत अच्छी बात है। आजकल हम क्या देख रहे हैं दुनिया में, स्ट्रेस पास करने का एक नेचर देख रहे हैं। हायर ऑफिसर से कुछ लेटर आया, उसने अपने कुलीग्स में ट्रांसफर कर दिया टेंशन। कुलीग्स ने अपने सबॉर्डिनेट्स में ट्रांसफर कर दिया, सबॉर्डिनेट्स ने कर्मचारियों में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे करते जाते हैं, काम बनता नहीं है,
1: मल्टीप्लाई।
0: हाँ, इसी तरह स्ट्रेस जब तक मैनेज नहीं करेंगे तो स्ट्रेस का जो बढ़ाव है उसे हम रोक नहीं सकते। एक बार स्ट्रेस बेस्ड एनवायरनमेंट बन गया तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना, छोटा है तभी उसे वहां ही समाप्त करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये मान के चल सकते कि हम 100% स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि चारों ओर स्ट्रेस ही है। लेकिन एक बात हम सोचें, कोई मछली बेच रहा है, मुझे लेना नहीं है, ठीक है, वो सस्ते में दे या फ्री में, मैं तो नहीं लूंगी, मुझे लेना ही नहीं है,
1: लेना ही नहीं है।
0: इसी तरह कोई स्ट्रेस बेच रहा है, मुझे लेना नहीं, अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मुझे लेना नहीं है, जब मैं अपने आप से फिक्स कर लेती हूँ मुझे स्ट्रेस लेना नहीं है, देने वाला चाहे कैसे भी दे मैं नहीं लूंगी, लेने वाला स्ट्रेस लेना बंद करे, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इजी। इससे क्या होगा, हमारी डिसीज भी कम होंगे, टकराव कम होगा, माहौल बदलेगा, मन शांत रहेगा, घर शांत रहेगा। तो हम जीवन क्यों जीते, केवल पैसे के तो लिए नहीं जीते ना, तो खुशियां हम अनुभव कर सकते हैं। खुश रहने के लिए, जिंदगी को वाह-वाह बनाने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम स्ट्रेस कैसे पास करते हैं और कैसे उसे रोक सकते हैं
0: जी।
1: अब एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये हमने स्ट्रेस की बात की, अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर बात की, जब चलो हमने हम इतने जागरूक हो गए और हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, पर हमारे आसपास, जैसे ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे काम की जगह पर, हमारे आस पड़ोस में, समाज में हम देखते हैं कि लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, वो तकलीफ में है, तो उनकी मदद हम कैसे करें?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सब के लिए एक शुभ भावना रखें कि जैसे मैं स्ट्रेस से बाहर आ रही हूँ या मैनेज कर रही हूँ, वैसे ये भी करें। ये सबसे ज़्यादा पहले ये पहुँचता है, हमारा ये जो बेस्ट विशेस है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये पहुंचता है, तो पहले इसे फैलाने दे। दूसरा, जो स्ट्रेस में है उनके साथ हम बातें करें, अगर हमारे नज़दीक के हैं, अगर हमारी बातें वो सुनते हैं तो हम उनसे बैठे बातें करें। कहते बातें भूतों को भगा देती हैं तो कई सारे भूत भाग जाते हैं
1: जी।
0: ठीक है, फिर साथ में हम मिलके बैठे, थोड़ा दोनों मिलके मेडिटेशन करें, दिल हल्का करें, फिर ऐसी जगह जहाँ से मुझे शांति मिली उनको भी ले जाए साथ में, और देखा अनदेखा ना करें। ये हमारा काम का चीज नहीं है, उनका है वो संभालने दो, ऐसे ना करें। क्योंकि हम, आपने जैसे कहा, हम सोशल एनिमल है, हमको सोसाइटी में रहना है, तो सबके स्ट्रेस का भी हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, तो उससे बाहर एक तो सबके प्रति हमारी शुभ भावना हो, सब खुश रहे, ये बहुत काम करता है। और उनको हम मदद किस लेवल पे कर सकते हैं, समझो कोई भूख के कारण परेशान है तो हम सदा उसका भूख तो नहीं मिटा सकते, लेकिन कमाई का रास्ता दिखा सकते हैं हम उनको, है ना। ऐसे हम छोटी छोटी मदद हम कर सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच वीना बहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और स्ट्रेस की तरफ देखने का हमारा एक नज़रिया जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और उसमें आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। आई एम वेरी श्योर हमारे लिसनर्स जो है उनको भी आपकी बातें सुनकर बहुत फ़ायदा हुआ होगा और वो भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर लाएंगे।
0: थैंक यू।
1: एक धन्यवाद के साथ मैं आज का शो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप फिर से आएंगे और हमें अलग अलग विषयों पर जागरूक करेंगे।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने अभी एक स्पेशल प्रोग्राम सुना स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और जिसमें हमें मार्गदर्शन कर रही थी ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। आज का शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904। इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और स्ट्रेस में खुद की और औरों की सभी की मदद कीजिए।
2: हेलो एंड नमस्कार सभी सुनने वालों को, संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं KLE वेनो ध्वनि 90.4 FM पर। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए, देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है। चलिए अभी मुस्कुराइए।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बी रिलैक्स। और आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो होस्ट और रेडियो दोस्त आरजे आयुष। आज इस मनमोहित शाम में हम बात करने वाले एक ऐसे एहसास की जिसमें कभी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचा जाता है, जिसमें इतने सारे भाव है और विचार एक साथ होते हैं। आपको बताता वही जो शाहजहां को मुमताज से था, अरे वही जो लैला को मजनू से था और रोमियो को जूलियट से, वही जो रणवीर को दीपिका से था और हमको आपसे। जी हाँ, अफेक्शन से लेकर अट्रैक्शन तक, आई लव यू से लेकर सॉरी तक, जब भी मेट से लेकर मैंने प्यार क्यों किया तक, जस्ट जोकिंग। हम बात कर रहे हैं प्यार की, यानी लव और रोमांस की। क्या बात है, आज तो सबने अपनी कुर्सी की पेटियां एकदम कस के बांध ली है। तो तैयार हो जाइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए और इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए। देखिए, एपिसोड प्रेम का है तो शुरुआत भी कुछ रोमांटिक म्यूजिक से ही करना पड़ेगी। तो सुनते रहिए हमारा शो वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स। और आपने ट्यून कर लिया है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखो, अब वेदर इतना रोमांटिक है तो बातें भी थोड़ी रोमांटिक होनी चाहिए ना, है ना। हम सभी को लाइफ में एक ऐसी लड़की पर या लड़के पर क्रश जरूर आता है जो हमारी लीग से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसको हम सोचते हैं यार ये मेरी लीग में तो बिल्कुल नहीं है। उफ वो स्माइल और उफ वो हेयर फ्लिकिंग एटीट्यूड, तो हमें तो लगता है यार कुछ नहीं होने वाला। अब वो देखो, वो इतनी खूबसूरत और हाई फाई, और हम ठहरे सिंपल साधे लड़के। तो इसी पर एक बड़ी मजेदार लाइंस है, कहीं सुनी थी, मेरे जहन में रह गई, वो आपको मैं सुनाता हूँ, आप शायद कविताओं से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो वो ऐसे है, इसमें एक शब्द है कार्बन मोबाइल। कार्बन मोबाइल बहुत पहले चलते थे, जो एक कंपनी का नाम है, कि मैं कार्बन मोबाइल की फोटो हूँ, तुम आईफोन की सेल्फी हो, मैं सड़क छाप काला खट्टा, तुम महंगी फालूदा कुल्फी हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक छोटे से ऑफिस का हाफ डे, ये मैं बता रहा हूँ, मतलब कि वो मुझसे कितनी बड़ी और कैसे मेरे आउट ऑफ लीग से है। तो कि मैं एक छोटे से ऑफिस का हाफ डे, तुम एग्जॉटिक वेकेशन हो, मैं बिन फाटक रेलवे क्रॉसिंग और तुम मेट्रो का एसी स्टेशन हो, मैं हूँ गर्मी की लू जैसा, तुम मानसून की बारिश हो, मैं मिन्नत किसी भिखारी की और तुम VIP सिफारिश हो, तुम योगी मोदी सी तेजस्वी और मैं राहुल गांधी का भाषण हूँ। चाहे देखिए मैच बड़ा मिस मैच है अपना, पर तुम संग मेरे जचती हो, एक बात कहूं अगर सुनती हो, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। हाँ चलिए, तो हिम्मत कीजिए और करिए उनसे बात, और सुनते रहिए हमारा ये रोमांटिक शो बी रिलैक्स इस रोमांटिक शाम में। ओके, ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब भी इसमें डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस रोमांटिक एपिसोड में। आपने ट्यून कर लिया है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू और मैं हूं आपका लव गुरु। नॉट अ लव गुरु, आई एम योर रेडियो होस्ट एंड रेडियो दोस्त RJ आयुष। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार वो मीठा एहसास होता है। सिंपल शब्दों में आपको मैं अगर बताऊं, जैसे प्यार के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्कूल वाला प्यार जो सबको होता है, आपको हुआ कि नहीं पता नहीं, मुझे तो जरूर हुआ, कॉलेज वाला प्यार और फिर एक क्रश वाला प्यार जो सिर्फ सिंगल साइडेड ही होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स। और आजकल तो एक और प्यार चल रहा है जो कि बहुत ऑनलाइन है, वो है इंस्टाग्राम वाला प्यार, बहुत हो रहा है लोगों को आजकल। कुल मिलाकर जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, प्यार की परिभाषा और प्यार की डेफिनेशन आपके लिए वैसे ही बदलती रहती है। और इन सब लव स्टोरीज में से एक स्टोरी ऐसी होती है जिसे हम किसी से शेयर नहीं करते, बस उसे अकेले में महसूस करते हैं। जिनके लिए हम ऑनलाइन स्टोरीज तो लगाते हैं, पर जैसे ही वो हमारी स्टोरीज देख लेते हैं, हम उन्हें फट से डिलीट कर देते हैं। वो सच्चा प्यार। मुझे पता है आप भी अभी मुझे सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों, ये प्यार आपका सालों साल भुलाया नहीं जाता। जिनके पास है वो बहुत खुश नसीब है और कुछ लोग अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। चिंता ना करिए, मेरी वेल विशेस आपके साथ हमेशा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए बजाते हैं कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए हमारा शो वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे सच्चे प्यार की, अब जिन्हें मिल गया वो तो बहुत खुश है। और कुछ मेरे सिंगल दोस्त ऐसे भी हैं जो उसकी अभी तक तलाश कर रहे हैं, जो अपनी क्रश की गलियों से गुजरते हैं उन्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए। क्रश का मतलब मैं आपको बता दूं कि जिन्हें आप पसंद करते हैं पर आप सोचते कि वो आपको पसंद नहीं करते या आपकी आउट ऑफ लीग है, तो उस पर ये कुछ लाइन है। तो वो कुछ लाइनें कुछ यूं है, इसी से रिलेटेड है कि जब वो क्रश को देखने के लिए जाते हैं और उनकी गलियों में घूमते हैं सिर्फ उनको एक नजर देखने के लिए, उस पर कुछ लाइनें मेरे ध्यान में आती है। आपको बताता हूँ कि इस उम्मीद में तू खिड़की से झांक ले शायद, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त शायरी है ये, कि इस उम्मीद में तू खिड़की से झांक ले शायद, मैंने गली में खेलते हुए बच्चे लड़वा दिए। आप जब इतनी प्यारी शायरी बोली है तो उतना ही प्यारा गाना आपको सुनाएंगे। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिलेटेबल टॉपिक की जो शायद आप भी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं रोमांस की, लव की, यानी प्रेम की। दोस्तों, रिश्ते बनाने में जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है, यानी बहुत वक्त जाता है, और टूटने में कुछ ही पल निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे गहरे रिश्ते हैं तो उन्हें एकदम संभाल कर रखिए, क्योंकि आपको बताऊं, सांसों की डोर बहुत नाजुक होती है, किस करवट से टूट जाए ये किसी को नहीं पता। और याद रखिए दोस्तों, ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे आप है। देखिए, किसी के मरने पर तो लाखों रोने वाले होंगे, तलाश उसकी करो जो आपके रोने पर मर जाए, बराबर ना? लेकिन आप मेरे शेरों से घायल ना होइए। आपको सुनाते हैं कुछ मरहम लगाने वाले गाने, तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

0: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।
1: दारा, दारा, दारा, दारा।

0: हेलो दोस्तों, बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा ये रिश्ता भी वैसे वैसे गहरा होता जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप शाम को अपना कीमती टाइम निकालकर हमें सुनते हैं, और हमारा ये फर्ज है कि आपको आपके काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एंटरटेन करते रहे। तो फिर चलिए ट्यून कर लीजिए हमारा चैनल वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु RJ आयुष के साथ। दोस्तों, लाइफ में अगर आपको कोई पसंद हो तो अपना चांस लीजिए, पर अपने लहजे में रहकर, अपना तमीज, अपनी लहजे को कभी ना भूले। जितना इंसान उसके बिहेवियर से बड़ा होता है, उतना वो दिल से भी बड़ा होता है। तो याद रखिए, हमेशा अपने लहजे में रहिए, तमीज में रहिए, बिहेवियर को एकदम बना के रखेंगे तो लाइफ एकदम मस्त चलने वाली है बाबा। और अगर हाँ हो जाए फिर तो क्या है, बारिश का मौसम है, डेट पर जाइए, एक दूसरे को करियर में सपोर्ट कीजिए, वीकनेसेस को ओवरकम कीजिए और ट्रिप्स पे जाइए। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो उसे बात करके सुलझा लीजिए। अब देखिए, अच्छे रिश्तों में थोड़ी भोड़ी नोक झोंक होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जहाँ प्यार होता है वहाँ नोक झोंक भी बहुत ही जरूरी होती है। और अगर आपकी भी इस वक्त किसी से नोक झोंक हो चुकी हो या चल रही हो या आपकी बातों से होने वाली हो, तो बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को मना लीजिए, क्योंकि ये वक्त लौट कर आने वाला नहीं है, लेकिन हम लौट कर जरूर आने वाले हैं। आफ्टर मेकिंग योर लिसन दिस सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग, सो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावा थी।

दोस्तों प्यार या रोमांस बहुत ही ब्यूटीफुल एहसास होता है जो ह्यूमैनिटी को बनाए रखता है और सालों तक नहीं सेंचुरीज तक बनाए रखता है। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन लिटरेचर आर्ट म्यूजिक एंड मूवीज टू। मतलब आपका प्यार आर्ट में भी ढूंढ सकते हैं और बहुत सारी चीजों में ढूंढ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं आपको किसी इंसान से ही प्यार हो। रियल लाइफ में देखा जाए तो प्यार जो है कई फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे एक्सिलरेटिंग रश फॉर अ न्यू रोमांस टू द डीप एंड एंड्योरिंग बॉन्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ऐसे प्यार को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बड़ी अच्छी कविता है इसी से रिलेटेड जो याया भूतवाला ने लिखी है, जो कि मैं आपको सुनाऊंगा पर इन जबरदस्त गानों के बाद। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस रोमांटिक शाम में हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर। तो कविता कुछ इस प्रकार की है, इसे लिखा है याया भूतवाला ने, पर आप लोग इससे बहुत ही ज्यादा रिलेट करेंगे। तो देखिए, पहली नजर में अगर तुमने उसे देख लिया और उसने तुम्हें और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत कह रहे हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि ये यार देखिए पहली नजर में तो हमें एंटिक चीजें भी पसंद आ जाती है, पर हम उसे घर में रखते हैं सिर्फ दिखाने के लिए या सजावट के लिए, बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि यार अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। और अगर किसी लड़की को देखकर वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देखकर तुम उसका, और इस क्यूट जेलेसी को तुम मोहब्बत कहते हो, तो शायद हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है उन्हें पिंजरों में कैद करने के लिए, आजाद करने के लिए नहीं, बस क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि याद रखो, दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अरे अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो सकता है मेरे दोस्त तुम गलत हो, क्योंकि दास्ताने इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई भी नंबर नहीं चाहिए होता। अरे बस क्योंकि तुम उसकी इंस्टा स्टोरीज का हिस्सा बन गए हो और वो तुम्हारी स्नैपचैट स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो शायद एक बार फिर आप गलत हो। क्योंकि फिल्टर्स के साथ मोहब्बत को कहीं सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है और महसूस किया जाता है। लेकिन अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो और अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाया कर देती है और तुम अपने सारे राज उसे बता देते हो, उसके सामने खोल देते हो और उसने भी अपने सारे डर का जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया है, अगर उसका हर एक आंसू सिर्फ तुम्हारी ही कमीज पर बहता हो और तुम्हारी हर मुस्कान की वजह सिर्फ उसकी नादानियां हो, तो शायद नहीं यही प्यार है। और इसे अगर ये तुम्हें मिल चुका है तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो और मौका मिले तो बस ये कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ऐसी मोहब्बत को मिलने में सालों लग जाते हैं और एक जिंदगी का एक काफी लंबा अरसा बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा, वैसे ही आपको ये कविता पसंद आई होगी, तो जाइए आप भी इंजॉय कीजिए इस हसीन शाम को अपने लव्ड वंस के साथ और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू आरजे आयुष के साथ। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट रोमांटिक इवनिंग अहेड। सी यू, बाय बाय।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मीणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।